0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहां निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 trillion के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब

0: दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के 2रे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को 2रे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तक मूसलाधार

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, बहुत लंबी है।
1: नौ बरस लंबी।

0: बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित है। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने यह भी बताया कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावों और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। सरकार ने बैट, बीएमएस, ईपोक, आईआईएन और लॉसिकी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Limited, Indian Institute of Petroleum, Dehradun, and the Society of Indian Automobile Manufacturers, no significant negative impact on vehicle fuel efficiency has been demonstrated. Vice President C.P. Radhakrishnan and Union Minister of Cooperation Amit Shah have extended their greetings on the occasion of the International Day of Cooperatives today. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, West Madhya Pradesh and Odisha for today. In the FIFA World Cup, Colombia defeated Ghana 1-0 in the final round of 32 match at Kansas City Stadium in the US to book their place in the next round. John Arias scored the winner in the 14th minute with a close range finish. Colombia will now face Switzerland in the round of 16. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की 6 दिन की राजकीय अंतिम यात्रा आज से। गुजरात के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। रूढ़िवादी नेता केको फुजिमोरी ने पेरू का राष्ट्रपति चुनाव जीता। फीफा विश्व कप में कोलंबिया, अर्जेंटीना और मिस्र अंतिम 16 में पहुंचे और नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में करियर की 105वीं जीत दर्ज कर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। अब समाचार विस्तार से। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की 6 दिवसीय राजकीय अंतिम यात्रा तेहरान में आज से शुरू होगी। अधिकारियों को इसमें लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।
2: ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियान, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिगफ, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्ग्रेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। ये अंतिम संस्कार 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में खामनेई की मृत्यु के बाद हो रहा है। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय में पूर्व विदेशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि श्री मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में होंगे।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रमानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री मोदी की ये इंडोनेशिया की 4थी यात्रा है। इस दौरान श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता जाने का भी कार्यक्रम है। योग्यकार्ता में श्री मोदी प्रम्बानंद मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि मलक्का जलडमरू मध्य समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यात्रा के दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दोनों नेता इस दौरान आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री

0: मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री का भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के समापन में श्री मोदी 10 से 11 जुलाई तक न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में न्यूजीलैंड की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान प्रमुख व्यापार और खेल जगत की हस्तियों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए दुर्गा प्रसाद।
1: गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। 51 वर्षीय फुजिमोरी पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी की बेटी हैं और चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। थी इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के सर्वोच्च चुनाव प्राधिकरण ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेज को हराया। पहले दौर के मतदान में दोनों उम्मीदवार 33 अन्य उम्मीदवारों से आगे चल रहे थे। इस बार के चुनाव में अपराध एक प्रमुख मुद्दा था। मोल्डोवा के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर मुंटेनो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अलेक्जेंडर मुंटेनो को राष्ट्रपति माया सांडू ने नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मुंटेनो ने अपने इस्तीफे का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। राष्ट्रपति माया सांडू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि जल्द ही नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तब तक मुंटेनो अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। राष्ट्रपति सांडू विभिन्न संसदीय दलों से परामर्श के बाद नए प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। अमेरिका आज अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 4 जुलाई को 1776 में आज ही के दिन अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उस समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेशों ने ब्रिटिश शासन से अपनी स्वाधीनता की औपचारिक घोषणा की थी। स्पेन और फ्रांस के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड गर्मी के कारण कई जंगलों में आग लगी हुई है, जिससे दक्षिण यूरोप में सूखे की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। स्पेन में कैटालोनिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जंगल में लगी भीषण आग अब भी बेकाबू है, जिससे लगभग 2300 हेक्टेयर भूमि की वनस्पति नष्ट हो गई है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में लू के कारण 3700 लोगों की मौत हुई है, जबकि स्पेन में गर्मी के कारण जून के अंत से अब तक 1000 से अधिक लोगों के मरने की खबर है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हरा दिया है। कोलंबिया के जॉन एरियास ने 14वें मिनट में मुकाबले का एकमात्र गोल किया। अंतिम 16 के मैच में अब कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में पर मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। उन्होंने अपने करियर की 105वीं जीत दर्ज की। 7 बार के चैंपियन जोकोविच ने फ्रांस के आर्थर रिंडरकनेच को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। कनाडा के फेलिक्स ओवर एलियासिम ने अमरीका के माइकल झिंग को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। इस बीच महिला सिंगल्स में अमरीकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला और कोको गॉफ के साथ साथ जापान की नाओमी ओसाका भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की 6 दिन की राजकीय अंतिम यात्रा आज से। गुजरात के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। रूढ़िवादी नेता केइको फुजिमोरी ने पेरू का राष्ट्रपति चुनाव जीता। फीफा विश्व कप में कोलंबिया, अर्जेंटीना और मिस्र अंतिम 16 में पहुंचे। और नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में करियर की 105वीं जीत दर्ज कर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good morning. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the World News. The headlines. 6-day state funeral of Iran's former supreme leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei to begin in Tehran today. 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed arrested in India. Conservative leader Keiko Fujimori wins Peru's presidential election. Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami in FIFA World Cup. Colombia and Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And Novak Djokovic equals Roger Federer's record at Wimbledon by notching 105th career victory. And now the news in detail. In Iran, preparations are underway for the 6-day state funeral of the former supreme leader, Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, which will begin in Tehran today. The authorities expect millions of mourners to attend the ceremonies with extensive security and traffic arrangements in place. Senior Iranian leaders, military commanders and foreign dignitaries paid their respects to Ayatollah Ali Khamenei at Tehran's Grand Musalla yesterday. Among those present were President Masoud Pezeshkian, Parliament Speaker Muhammad Baghir Kalibaf, Foreign Minister Abbas Araghchi and Revolutionary Guards Commander Ahmad Wahidi. India was represented by Governor of Bihar, Lieutenant General Sayyed Atta Hasnain and Minister of State for External Affairs Pavitra Margarita. Among other foreign dignitaries were former Russian President Dmitry Medvedev, senior Chinese representative He Wei, Afghanistan's acting foreign minister Amir Khan Muttaqi, and delegations from several countries. The funeral comes after Khamenei was killed in Israeli and US airstrikes on the 28th of February. The funeral procession will continue over the next few days before concluding with his burial in the holy city of Mashhad on the 9th of this month. Public mourning will continue for 40 days thereafter. Gujarat Anti-Terrorist Squad ATS has arrested 8 people associated with the Pakistan-based banned terror outfit Jaish-e-Mohammed. They were arrested from various districts of Gujarat and Madhya Pradesh in simultaneous operations yesterday. According to the Gujarat ATS, the accused were in touch with Pakistani handlers and actively working on behalf of Jaish-e-Mohammed to set up an active network in the state of Gujarat to further its terror activities. They were also working to translate the literature of Jaish-e-Mohammed into Gujarati and spread its ideology. A total of 254 pieces of literature, including the flag of Jaish-e-Mohammed, were recovered from the accused. The investigation also revealed financial links to the Pakistan-based terror group. The arrested individuals have been sent to a 14-day police remand. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and her French counterpart, Roland Lescure, co-chaired the India-France Economic and Financial Dialogue in Aix-en-Provence city yesterday. Both the ministers recognized the value of the French Development Agency's work in India for economic development and welcomed the prospects for future projects. The ministers have pledged to use the Economic and Financial Dialogue as the main platform for addressing economic, financial, technological, investment and trade matters between India and France. The United States is today marking the 250th anniversary of the Declaration of Independence. The celebration of 4th of July honors the signing of the American Declaration of Independence by country's founding fathers on this day in 1776, when the 13 American colonies formally declared their independence from British rule. The historic milestone, known as the Semiquincentennial or America 250, will be commemorated with nationwide celebrations, including parades, military flyovers, concerts, historical reenactments, and fireworks displays. Major events are lined up in Washington, D.C. and Philadelphia, where the declaration was adopted. Observed as a federal holiday, Independence Day is among the United States' most significant national celebrations, with fireworks becoming one of its defining traditions. Major cities will be hosting elaborate firework displays that attract thousands of spectators, while smaller communities organize local events. On the occasion, President Donald Trump announced pardons for 11 people, including a former business partner of Washington lobbyist Jack Abramoff, and 9 individuals convicted in cases related to bypassing vehicle emissions control systems. This is Akashvani. You are listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. In Peru, conservative leader Keiko Fujimori has been declared the winner of the presidential runoff election. 51-year-old Fujimori, daughter of former President Alberto Fujimori, was contesting for the post of president for the fourth time. She is set to become Peru's 9th president in the past 10 years when she assumes office later this month. The country's top election authority formally certified her victory yesterday. Fujimori defeated Sanchez in the 7th of June runoff, after both candidates emerged ahead of the 33 other candidates in the first round of voting held in April. Crime was a key issue in the election, with voters expressing concern over rising extortion and violence by organized criminal gangs. During her campaign, Fujimori pledged to tackle crime with an iron fist. Multiple wildfires continue to burn across parts of Spain and France following a prolonged spell of record-breaking heat that has left vegetation parched and intensified drought conditions across southern Europe. In Spain, a large wildfire that broke out yesterday in northeastern region of Catalonia remains out of control, with around 2,300 hectares of land destroyed. Nearly 10,000 residents in several municipalities of Girona province have been evacuated or advised to remain indoors, while several roads have been temporarily closed. No casualties have been reported. The recent heat wave has been linked to at least 3,700 excess deaths in France, Belgium and the Netherlands, while Spain has separately reported more than 1,000 heat-related deaths since late June. In the FIFA World Cup, Argentina beat Cabo Verde 3-2 after extra time in a thrilling round of 32 match at Miami Gardens in the US to enter the round of 16. Earlier, Egypt advanced after defeating Australia 4-2 in a penalty shootout at Arlington in the US. We have a report.
4: Defending champions Argentina survived a major scare against Cabo Verde, a nation of just over 5 lakh people, before booking their place in the round of 16. Lionel Messi put Argentina ahead in the 29th minute with his 7th goal of the tournament and the 20th World Cup goal of his career in his 30th appearance across 6 editions. Diroy Duarte restored parity for Cabo Verde in the 59th minute, forcing the match into extra time. Lisandro Martinez gave Argentina the lead once again, but Sidney Lopes Cabral produced a stunning equalizer to keep the underdog's dream alive. The decisive moment came in the 111th minute when Cristian Romero's header from a Messi corner deflected off Dina Borges and into the net for an own goal, sealing Argentina's dramatic victory. Earlier, Australia and Egypt were tied 1-1 after regulation time and goalless extra time before Egypt prevailed 4-2 in the penalty shootout to register their first ever World Cup knockout stage victory. Argentina will now face Egypt in the round of 16 on Tuesday. Manik from Sports Desk for Akashvani News.
3: In another encounter, Colombia defeated Ghana 1-0 in the final round of 32 match at Kansas City Stadium in the US to book their place in the next round. In tennis, Novak Djokovic equaled Roger Federer's all-time men's singles record for the most match wins at Wimbledon by notching his 105th career victory. The seven-time champion Djokovic achieved this milestone by defeating France's Arthur Rinderknecht 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 on centre court to enter the pre-quarterfinals of the tournament. And in men's cricket, the second T20 international between India and England will be played in Manchester today. The match will begin at 7 this evening, Indian time. The opening game of the five-match series was abandoned due to rain at Chesterley Street. And now, before we close, here are the highlights of the bulletin. Six-day state funeral of Iran's former supreme leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei to begin in Tehran today. Eight people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed arrested in India. Conservative leader Keiko Fujimori wins Peru's presidential election. Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in thrilling encounter 3-2 at Miami in FIFA World Cup. Colombia and Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And Novak Djokovic equals Roger Federer's record at Wimbledon by notching 105th career victory. And that is the end of this World News Bulletin.

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुप्रभात और हार्दिक अभिनंदन और शुभ शनिवार आप सभी को। मैं आपके साथ प्रियांशी और कार्यक्रम चल रहा है दिल का मेलबॉक्स। आप सभी के मनपसंद गीतों की सुरीली माला लिए हाजिर हूं मैं। इस कार्यक्रम में आप हमें अपने प्रिय गीत और संदेश ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपके सभी संदेशों को कार्यक्रम में सम्मिलित कर पाएं। यदि ना कर पाएं तो इसे हमारी चूक समझकर क्षमा कीजिएगा और ऐसे ही लिखते रहिएगा। आपके मन में कोई बात हो, कोई दुआ, कोई छोटा सा संकल्प या कोई खास संदेश, तो उन्हें भी अपने प्रिय गीतों के साथ हमें अवश्य भेजिए। तो श्रोताओं, जल्द ही लिख भेजिए हमें ये सारी बातें, अपना मनपसंद गीत, संदेश, नाम और शहर fmgoldairdelhi@gmail.com पर। क्या पता कहीं अगला सुरमई पल आप ही की पसंद से चल पड़े। आइए शुरुआत करते हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन और इनके साथ हकीकतपुरा मऊ से जुड़े हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू। आइए शुरुआत करें इनके फरमाइशी गीत से।

श्रोताओं आपके संदेशों की ओर जाएं उससे पहले फिर एक बार आपको ये जानकारी बता दें, यदि आप दिल्ली से सुन रहे हैं तो गौर फरमाएं, साउथ दिल्ली में शेख सराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती रोगी को अति शीघ्र 2 यूनिट खून की आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हों, इस मोबाइल नंबर पर कृपया संपर्क करें 9810652903। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, 9810652903। संपर्क करने के लिए आपने आशा है नंबर सुन लिया होगा। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है, तो यदि आप समर्थ हों और इस जगह हों तो कृपया अवश्य रक्तदान कीजिएगा। अब आइए श्रोताओं फिर आपके संदेशों की ओर चलें। बहुत सारे श्रोता हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, आइए देखें। खरगांव सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई जान और भाई राजकुमार बोड़ाना हमारे साथ जुड़े हैं। सुदामा नगर मध्य प्रदेश से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु हैं हमारे साथ। आइए और देखें किस किस ने हमें संदेश भेजा है। नारायण खर्चे जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है, इंदौर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं ये। इनके साथ हैं ललिता, गणेश, कार्तिक, परी और स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका, लड्डू, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। रोहिणी के सतप्रकाश सनोठिया जी ने हमें बहुत ही प्यारी सी कविता लिख भेजी है, इसका नाम है आस। कहते हैं, काले बादल घिर कर आए, तपती धरती को सहलाएं, चली हवा छूकर मस्तानी, अब बरसेगा रिमझिम पानी, सौंधी मिट्टी महक उठेगी और हर बगिया फिर चहक उठेगी। सतप्रकाश जी, आशा तो हम सभी की यही है, तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर एके टंडन की फरमाइश पर ये गीत और बुलाते हैं बरसात को, रिमझिम बरसे पानी।

आइए श्रोताओं, फिर नजर डालते हैं आपके भेजे हुए संदेशों पर। देखें किसने लिखा है हमें, कहां से और किन गीतों के साथ। सलीम अख्तर और रेशमा बेगम लिख रहे हैं हमें अलीगढ़ से। शांतिनगर सोनीपत से सुदर्शन मुखीजी, अनीता मुखीजी और सिमरन का संदेश प्राप्त हुआ है। पुराने श्रोतागण आज हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से प्रकाश कोगिया, मनोहर लाल गांधी, भगवती सोलंकी, अनीता वर्मा, सत्यप्रकाश गोयल और स्वामी अनिल त्यागी ये हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हैं। और एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ, सुहेल हसन और रसीद वारसी हमारे साथ जुड़े हैं। और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं महेश जी की फरमाइश पर ये गीत। बहादुरगढ़ हरियाणा से लिख रहे हैं हमें

महेश और मीना जी की फरमाइश पर हमने सुना ये गीत। अब आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। नेमुआ बिहार से अफरोज शेख हमारे साथ जुड़े हैं। पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा जी जुड़े हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी हमारे साथ हैं। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और अयान बाबू हमारे साथ हैं। रामनगर पूर्णिया बिहार से मुकेश और संतोष हमारे साथ जुड़े हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया, जसवीर जसी, सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हैं। ये लिख रहे हैं हमें, कहां से लिख रहे हैं ये नहीं देखा, पंजाब से लिख रहे हैं, नथाना से। आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, चैतन्य, रचिता और आशीष राजा। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता और रिधान खुराना हमारे साथ जुड़े हैं। सुधाकर जाधव जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। इनके साथ हैं डॉक्टर प्रशांत, संचित प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत, सानवी और कल्पना। और व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु, संस्कृति और पौरुष। अब आइए नई दिल्ली के अग्रसेन यादव, शकुंतला यादव और गरिमा की फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला गीत।

श्रोताओं आपके संदेशों की ओर चलें उससे पहले एक बार फिर आपको ये जानकारी दें कि यदि आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो गौर करें, साउथ दिल्ली में शेख सराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती रोगी को अति शीघ्र 2 यूनिट खून की आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदानकर्ता आप किसी भी ब्लड ग्रुप के हों तो रक्तदान करने में सक्षम हों तो इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9810652903। मैं फिर दोहराती हूँ 9810652903। इस नंबर पर संपर्क करें, आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है, तो यदि आप समर्थ हों तो अवश्य जाएं और रक्तदान करें। अब एक बार फिर श्रोताओं चलते हैं आपके संदेशों की ओर। हमारे पास आपके संदेश लगातार आए जा रहे हैं। दत्रेंगी से भागवत वर्मा, शांति वर्मा, लीलावती, विनीता और रुद्रा ने हमें संदेश भेजा है। वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार का संदेश प्राप्त हुआ है। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी जी हमें लिख रहे हैं एकता कॉलोनी रोहतक से। बबलू कश्यप, सिराज मिथुन, अशरफ अली और नवाब अहमद भारती का संदेश प्राप्त हुआ है दिल्ली से, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप जुड़े हैं हमारे साथ। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बासी परिवार भी हमारे साथ जुड़ा है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजा, नबान और पूरा अब्बासी परिवार हमारे साथ जुड़ा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल मोहन, उषा मोहन, तिलु नायक और मधु नायक भी हमारे साथ जुड़े हैं ढांडा से। जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो भी जुड़े हैं जनकपुरी सहारनपुर से हमारे साथ, और रेनू रॉयल जुड़ी हैं रोहिणी से। आइए श्रोताओं इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये मधुर गीत।

संदेश आपके अनुरोध और आपकी संवेदना ही तो इस कार्यक्रम की रूह है। अपना प्रेम और प्रोत्साहन ऐसे ही भेजते रहिए, हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है। कहते हैं हाथ जुड़ाए छुड़ाए जाते हैं अक्सर, रिश्ते नहीं छुड़ाए जाते। गुलजार साहब के ये बोल सच्ची तो हैं। मिलेंगे फिर समाचार के पश्चात। जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार और यहां की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं प्रियांशी भटनागर और आपका अभिनंदन है आपके प्रिय यात्रा कार्यक्रम तस्वीर में। आज की तस्वीर है महाबलेश्वर की। सह्याद्री की पर्वतमाला में बसा महाबलेश्वर उन विरल स्थानों में है जहां प्रकृति ने अपनी उदारता और इतिहास ने अपनी स्मृतियां एक साथ संजोकर रखी हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले का ये पर्वतीय नगर समुद्र तल से लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्राचीन मंदिरों की घंटियों से लेकर धुंध में खोए दृश्य बिंदुओं तक, औपनिवेशिक काल की विरासत से लेकर स्ट्रॉबेरी के खेतों तक, महाबलेश्वर का प्रत्येक पड़ाव अपनी अलग कथा कहता है। इस नगर की यात्रा केवल पर्वतों और वादियों तक सीमित नहीं रहती। यहाँ की पगडंडियां तो इतिहास तक पहुंचती हैं, मंदिर आस्था का स्मरण कराते हैं और घाटियां प्रकृति का विराट रूप दिखाती हैं। और यहाँ का स्थानीय जीवन इस भूमि के सहज सौंदर्य से परिचित कराता है। तो आइए आज हर प्रकार से समृद्ध महाबलेश्वर की यात्रा आरंभ करें।

महाबलेश्वर की यात्रा का आरंभ पुराने महाबलेश्वर से कीजिए। यहीं स्थित पंचगंगा मंदिर के बारे में मान्यता है कि कृष्णा, वेन्ना, कोयना, सावित्री और गायत्री, ये पांच पवित्र नदियों का उद्यम यहीं से होता है। समीप ही भगवान शिव को समर्पित प्राचीन महाबलेश्वर मंदिर और कृष्णाबाई मंदिर ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपरा को आज भी जीवित रखा हुआ है। कृष्णा नदी के महात्म्य के बारे में तो कहा गया है, कृष्णा वेणी नदी प्राहु साक्षात विष्णु स्वरूपिणी, तस्यास्तीरे वसे नित्यम सरुद्रत्वं प्रपद्यते। अर्थात कृष्णा और वेणी नदियां साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप हैं और इनके पावन तट पर साधना करने वाला शिवत्व को प्राप्त होता है। आस्था के इस पड़ाव से आगे बढ़िए तो महाबलेश्वर का इतिहास भी आपका स्वागत करता है। समीप ही स्थित प्रतापगढ़ दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य का साक्षी है, जबकि नगर के पुराने भवन और औपनिवेशिक स्थापत्य उस समय को याद दिलाते हैं जब महाबलेश्वर तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। यहीं से आरंभ होती है महाबलेश्वर की वो यात्रा जहां हर मोड़ पर इतिहास, आस्था और प्रकृति एक दूसरे का साथ निभाते दिखाई देते हैं।

महाबलेश्वर का परिचय उसके पर्वतों से पहले उसकी आस्था से होता है। महाबलेश्वर अर्थात महाबल के ईश्वर भगवान शिव की भूमि। सह्याद्री की इस पुण्य भूमि में स्थित प्राचीन महाबलेश्वर मंदिर शताब्दियों से श्रद्धा का केंद्र रहा है। हेमाड़ पंथी स्थापत्य शैली में निर्मित ये प्राचीन मंदिर विशाल काले पत्थरों, सुदृढ़ शिल्प और संतुलित रचना के कारण मध्यकालीन दक्कनी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन उपरांत कुछ क्षण समीप स्थित कृष्णाबाई मंदिर भी अवश्य जाइए। यहीं से कृष्णा घाटी का दृश्य एक अलग ही रूप में दिखाई देता है। महिमा पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर ब्रह्मादि नामपि तद्वसन्ना स्त्वयि गिरः। अर्थात हे महादेव, आपके महिमामय स्वरूप का पूर्ण वर्णन करना स्वयं ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी संभव नहीं।

इसके बाद अब यदि दिन भर आपको महाबलेश्वर को देखना हो तो आर्थर सीट से शुरुआत कीजिए। क्वीन ऑफ पॉइंट्स कहलाने वाला ये दृश्य बिंदु सावित्री घाटी का अप्रतिम विस्तार दिखाता है और पास ही है टाइगर स्प्रिंग, जहां 12 महीने निर्मल जल प्रवाहित होता है। आगे केट्स पॉइंट से धौम बांध और कृष्णा घाटी का मनोरम दृश्य दिखता है, जबकि एलिफेंट्स हेड या नीडल पॉइंट से आप अनोखी शैल रचना के कारण सहज ही ध्यान खिंचा लेंगे। और यदि आपका समय साथ दे तो लुडविक पॉइंट तक अवश्य जाइए। सह्याद्री की पर्वतमालाएं वहां से दूर दूर तक खुलती चली जाती हैं। दिन की शुरुआत यदि आपने विल्सन पॉइंट के सूर्योदय से की हो तो उसका समापन बॉम्बे पॉइंट के सूर्यास्त के साथ कीजिए। और यदि यात्रा वर्षा ऋतु की हो तो लिंगमाला, धोबी और चिनामैन जलप्रपात अपने पूरे वेग और सौंदर्य के साथ आपकी प्रतीक्षा करते मिलेंगे।

श्रोताओं, अब समय हो चला है एक अल्पविराम का। लौट कर आपको बताएंगे महाबलेश्वर के महत्वाकांक्षी जगहों के बारे में।

तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और तस्वीर कार्यक्रम में मैं प्रियांशी आपको महाबलेश्वर की यात्रा पर ले चल रही हूँ। श्रोताओं, यात्रा में आगे चलें उससे पहले एक समाचार है आपके लिए। साउथ दिल्ली में शेख सराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती रोगी को अति शीघ्र 2 यूनिट खून की आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और यदि रक्तदान करने में सक्षम हों तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9810652903। मैं पुनः स्पष्ट करती हूँ 9810652903। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है, तो आप समर्थ हों तो अवश्य रक्तदान कीजिए। और फिलहाल मेरे साथ चल पड़िए वापस महाबलेश्वर की यात्रा पर। तो श्रोताओं, दर्शन और दर्शनीय स्थलों के पश्चात अब इस यात्रा में कुछ ऐसे पड़ाव भी जोड़ लेते हैं जहां पहुंचकर आगे बढ़ने की जल्दी ही नहीं होगी। वेन्ना झील पहुंचकर यदि नौका विहार का मन हो जाए तो उसे टालिएगा मत। शांत जल, चारों ओर फैली हरियाली और किनारे की हलचल, महाबलेश्वर की दोपहर बिताने का इससे सुंदर तरीका कम ही मिलेगा। और आप चाहें तो नदी किनारे घुड़सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। और यदि एक दिन आपके पास अतिरिक्त हो तो टापोला का रुख कीजिए। कोयना नदी और शिवसागर जलाशय के विस्तृत बैकवाटर्स के कारण इसे मिनी कश्मीर कहा जाता है। नौकायन, कायाकिंग और प्रकृति की नीरवता, तीनों यहाँ आपका स्वागत करते हैं। सह्याद्री के ये सदाबहार वन अनेक पक्षियों, तितलियों और वन्य जीवों का भी आश्रय हैं। और भाग्य साथ दे तो मालाबार जायंट स्क्विरल, बार्किंग डियर या रंग बिरंगे पक्षियों की झलक भी आपकी यात्रा का हिस्सा बन सकती है।

श्रोताओं, यदि आप महाबलेश्वर आएं और पंचकणी ना जाएं तो यात्रा कुछ अधूरी सी लगेगी। टेबल लैंड के विशाल पठार पर कुछ देर पैदल चलिएगा। दूर तक फैला हुआ आकाश और समतल धरती इस क्षेत्र को एक अलग ही स्वर देते हैं। पारसी पॉइंट और सिडनी पॉइंट से धौम बांध का दृश्य विशेष रूप से आकर्षक दिखाई देता है। और हाँ, लौटते समय यदि सड़क किनारे किसी स्ट्रॉबेरी फार्म का बोर्ड दिख जाए तो गाड़ी कुछ देर के लिए रुकवा लीजिएगा। स्ट्रॉबेरी तो मिलेगी ही, और शायद महाबलेश्वर की सबसे मधुर स्मृतियों में से एक भी वहीं आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी, क्योंकि महाबलेश्वर का स्वाद ही उसकी पहचान का उतना महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कि उसके दृश्य। भारत की अधिकांश स्ट्रॉबेरी का उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है, इसलिए ताजी स्ट्रॉबेरी और क्रीम का स्वाद लिए बिना यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। पंचकणी मार्ग पर स्थित मैप्रो गार्डन के जैम्स, क्रश सिरप और चॉकलेट फज भी यात्रियों की पहली पसंद है। भोजन में महाराष्ट्रियन थाली, मिसल पाव, वड़ा पाव और गर्मा गर्म कॉर्न पैटीज का स्वाद अवश्य लीजिए। लौटते समय स्थानीय बाजारों से स्ट्रॉबेरी, फज, चिक्की, शहद और हाथ से तराशी गई लकड़ी की वॉकिंग स्टिक्स या फिर कास्ट निर्मित सजावटी वस्तुएं स्मृति चिन्ह के रूप में साथ ले जा सकते हैं। और यदि आपकी रुचि कला में हो तो पंचकणी के निकट ही स्थित है देवराय आर्ट विलेज। यहाँ पारंपरिक धातु एवं कास्ट शिल्प से परिचित होने का एक सुंदर अवसर मिलेगा। और अगर आप मार्च या अप्रैल में यहाँ आए तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव इस पूरी यात्रा में मिठास का एक और रंग घोल देगा।

श्रोताओं, कहानियों के नगर में हम भी लौटे, उससे पहले एक बार फिर आपको ये जानकारी दें कि साउथ दिल्ली में शेख सराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती एक रोगी को अति शीघ्र 2 यूनिट खून की आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदानकर्ता, अगर आप किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हों, तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9810652903। मैं पुनः ये संपर्क नंबर रिपीट कर रही हूँ, 9810652903, 9810652903। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है।

तो आइए श्रोताओं, अब आपको यात्रा की कुछ आवश्यक जानकारियां भी दे दें। दिल्ली से अगर आप महाबलेश्वर पहुंचने का सबसे सुविधाजनक मार्ग जानना चाहते हैं तो वो पुणे तक है, रेल या विमान से। पुणे से महाबलेश्वर लगभग 120 किलोमीटर दूर है, जहां टैक्सी और महाराष्ट्र राज्य परिवहन की नियमित बसें उपलब्ध हैं। और यदि आप मुंबई होकर यात्रा करना चाहें तो वहां से भी सड़क मार्ग द्वारा लगभग 5 से 6 घंटे में महाबलेश्वर पहुंचा जा सकता है। घूमने का सबसे सर्वोत्तम समय अक्टूबर से फरवरी माना जाता है, लेकिन अगर आपको स्ट्रॉबेरी का मौसम देखना हो तो मार्च और अप्रैल चुनिए। और यदि आपको धुंध, हरियाली और प्रपातों का सौंदर्य आकर्षित करे तो वर्षा ऋतु का अपना अलग ही आनंद है। सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत कई प्रमुख स्थलों और होटलों में रैंप तथा सुगम प्रवेश जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। फिर भी अगर आप वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के साथ यात्रा करें तो पर्वतीय यात्रा से पहले संबंधित होटल या स्थल से जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। और चलते चलते एक छोटी सी बात, प्रकृति तो हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन लौटते समय उसकी स्वच्छता और शांति अपने पीछे छोड़ना ना भूलिएगा।

महाबलेश्वर की संस्कृति सह्याद्री की मिट्टी से उपजी है। यहाँ मंदिरों की आरती, संत परंपरा और मराठा इतिहास आज भी जनजीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। पंचगंगा और महाबलेश्वर मंदिरों में प्रतिदिन गूंजते शंख, घंटियां और स्त्रोत इस भूमि की आध्यात्मिक पहचान को स्वर देते हैं। लोक संस्कृति में पुवाड़ों की वीर गाथाएं, अभंग और कीर्तन की भक्ति धारा तथा भारूड़ की लोक अभिव्यक्ति आज भी महाराष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना को जीवित रखे हुए हैं। पर्व उत्सवों के अवसर पर लेजीम और धनगरी गाजा जैसे लोक नृत्य और लावणी की सजीव प्रस्तुतियाँ इस अंचल की सांस्कृतिक रंगत को और भी समृद्ध बनाती हैं। यदि समय साथ दे तो स्थानीय बाजार या किसी मंदिर परिसर में कुछ देर अवश्य ठहरिए। किसी भी यात्रा की सबसे सुंदर स्मृति आखिर केवल दृश्य नहीं, उस स्थान की संस्कृति और वहाँ के लोगों का अपनापन भी तो होता है।

सह्याद्री की वादियों में बसा महाबलेश्वर केवल एक रमणीय पर्वतीय नगर नहीं, बल्कि प्रकृति, आस्था और संस्कृति का ऐसा संगम है जो हर यात्री को कुछ न कुछ साथ लेकर लौटने का अवसर देता है। कोई यहाँ से धुंध में लिपटी पहाड़ियों की स्मृति ले जाता है, कोई कृष्णा का आशीर्वाद, तो कोई स्ट्रॉबेरी की मिठास और यहाँ के लोगों का सहज अपनापन। भारतीय संस्कृति का एक शाश्वत संदेश यही तो है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। अर्थात ये अपना है और वो पराया, ऐसे विचार संकीर्ण मन वाले करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। इसी भावना के साथ आज की तस्वीर यहीं पूर्ण होती है। अगली यात्रा में फिर किसी नए नगर, नई संस्कृति और नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक अनुमति दीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर। प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।

कसतस्तिग्नेल किशोर कुमार ने याराना फिल्मेलो सनाजात लुर्चोमा जातकान अंजान तांग लुयांग स्टिगा जातकान राजेश रोशन।

डिग्री मिस तिङ जुकपेका किशोर कुमार ने गोलमाल फिल्मेलो सनाजात लुर्चोमा जातकान गुलजार तांग लुयांग श्रीका जातकान आर डी बर्मन

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: gaje akashvani lini shunchiktain yime chu chu chu chek chadu kasata tusto chapiges thing ne akashvani dilli ne hindi tang angrezi na nasul sanacha
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan today. The project has been developed at a total cost of 480 crore rupees. Spread over an area of more than 23,000 square meters, the new terminal building is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. The new terminal building at Jodhpur Airport will provide a significant boost to tourism, trade and employment generation in the region. Mr. Modi also launched the modified Uran scheme in Jodhpur with an allocation of 28,840 crore rupees over the next 10 years. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. The Union Home Ministry has designated 23 individuals based in Pakistan as terrorists under the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. They were linked to Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Tayyaba and other organizations. These individuals were designated as terrorists for their involvement in various activities, including infiltration, recruitment, supply of arms and planning attacks in Jammu and Kashmir. This will allow agencies such as the National Investigation Agency to block their finances, impose embargoes on arms sales and seize their assets. The government has issued notice to Telegram over widespread piracy reports. According to official sources, the government has directed Telegram to take immediate measures against pirated films and OTT content. Sources further said that the platform has been asked to submit the action taken report within 15 days. The bilateral investment agreement BIA between India and Israel came into force today. The agreement was signed in September last year in New Delhi. The finance ministry said the BIA is a landmark step towards strengthening bilateral economic relations and ensuring a secure and predictable investment climate. The ministry noted that the BIA is expected to contribute to increased cross-border investment activity and further deepen the economic partnership between India and Israel. Union Minister for Railways Ashwini Vaishnav has expressed confidence that the entire high-speed rail corridor connecting Ahmedabad and Mumbai will be completed by the end of 2029. Speaking to media in Ahmedabad after reviewing various ongoing railway projects in Gujarat, the minister stated that the construction of the Mumbai-Ahmedabad bullet train project is progressing rapidly, with 80% of the work in the Gujarat section already completed. He added that the high-speed rail network is being developed in a phase-wise manner, with the first operational section connecting Surat to Bilimora scheduled to open next year. In Iran, preparations are underway for the six-day state funeral of the former Supreme Leader Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, which will begin in Tehran today. Senior Iranian leaders, military commanders and foreign dignitaries paid their respects to Ayatollah Ali Khamenei at Tehran's Grand Musalla. India was represented by Governor of Bihar, Lieutenant General Sayyid Atta Hasnain, and Minister of State for External Affairs, Pavitra Margarita. The funeral procession will continue over the next few days before concluding with his burial in the holy city of Mashhad on the 9th of this month. Public mourning will continue for 40 days thereafter. The Democratic Republic of Congo has reported more than 1,500 confirmed Ebola cases, including nearly 500 deaths, as the WHO warned that the outbreak remains serious. The outbreak continues to spread in the eastern provinces of Ituri and North Kivu. WHO says insecurity and armed conflict in affected areas are hampering case detection and contact tracing. The Inter Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, West Madhya Pradesh and Orissa for today. The weather agency predicted heavy rainfall conditions over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Gangetic, West Bengal, Chhattisgarh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Marathwada, West Rajasthan and southern parts of the country as well. Indian Grandmaster R. Pragyananda produced a stunning finish to the rapid section of the Croatia Grand Chess Tour. He won all three of his matches yesterday to tie for the lead with Francis Ali Reza Firozia. Pragyananda defeated Ivan Šarić, Bogdan Daniel Dak and Anish Giri to climb to the top of the standings ahead of the Blitz section.
3: And in men's cricket, the second T20 international between India and England will be played in Manchester today at 7 p.m. IST. The opening game of the five-match series was abandoned due to rain at Chesterler Street. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 284.9 meters यानी 1053 kHz और FM megahertz 101.1 पर हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं. दिन के 1:10 हो रहे हैं. प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम

जब सुनिए सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में बादल फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार अनु मलिक।

अभी आपने सड़क फिल्म का गीत सुना अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीतकार और संगीतकार थे समीर और नदीम श्रवण। लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाज़ों में जीत फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ों में जुदाई फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

प्रोग्राम के अंत में सुनिए उदित नारायण की आवाज़ में जानम समझा करो फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं मजरू और संगीतकार अनु मलिक।

0: डे न्यूज तंग इस तंग चौंक का दोपहर समाचार सनाचार
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीनफील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहिमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है। IMD ने कहा है कि अगले 4 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों की क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बलोतरा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से है, जिनमें रेलवे, सड़कें, पेट्रोकेमिकल्स, बिजली की तरसील और तवानाई वगैरह भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बालोतरा में पचपेदरा के मकाम पर मुल्क का पहला ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कम्प्लेक्स कौम के नाम वक्फ किया, जो मुल्क के तवानाई और पेट्रोकेमिकल के शोबे में एक बड़ी कामयाबी है। जनाब मोदी ने बलोतरा में खिताब करते हुए कहा कि
2: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है।
1: इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का संग बुनियाद भी रखा, जिस पर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आने का अंदाजा लगाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने चूरू सादुलपुर और चूरू रत्नागढ़ की रेल लाइन को दोहरा करने से मुतालिक प्रोजेक्ट और जोधपुर रिंग रोड सेक्शन 2 और नेशनल हाईवे 125A को 4 लेन वाले प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ किया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये इमारत 23,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा रकबे पर फैली हुई है और इसमें सालाना 20 लाख मुसाफिरों की आमद और रफ्त की गुंजाइश है। इस इमारत में मुसाफिरों के लिए जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं, ताकि वो बिला रुकावट और आसानी से सफर कर सकें। इस नई टर्मिनल इमारत से खित्ते में सियाहत, तिजारत और रोजगार के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने जोधपुर में उड़ान स्कीम का भी आगाज किया, जिसे नए सिरे से तशकील दिया गया है। इस स्कीम के लिए अगले 10 साल के दौरान 28,840 करोड़ रुपए सर्व किए जाने का निशाना रखा गया है। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को तकवीत देने की गरज से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सनांत के मकाम पर CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट मरकज का इफ्तिताह करेंगे। इसे 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बनाया गया है। ये मरकज मुल्क की तकनीकी साजो सामान तैयार करने के सफर में एक अहम संग मील साबित होगा। मरकजी वजारत दाखिला ने पाकिस्तान के 23 अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है। ये दहशतगर्द जैश मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इन अफराद को शोरिस पसंदी, नए लोगों को भर्ती करने, असलहे की सप्लाई और जम्मू कश्मीर में हमलों की मंसूबाबंदी जैसी मुतअद्दिद सरगर्मियों में उनके मुलव्वस होने पर दहशतगर्द करार दिया गया है। यह कदम कौमी तफ्तीशी एजेंसी जैसी एजेंसियों को इस बात की इजाजत देगा कि वो इन अफराद के इकतसादी असासे को मुंजमद करे, असलहे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाए और उनकी जायदादें जब्त करे। यूएपीए की तरमीम से भारत के इंसदाद दहशतगर्दी के कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूती हासिल हुई है। इसके जरिए मरकजी हुकूमत और तफ्तीशी एजेंसियों को मजीद इख्तियारात हासिल हुए हैं। इस तरमीम को 14 अगस्त 2019 में नोटिफाई किया गया था। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज इंतखाबी फहरिस्त के खुसूसी नजरसानी अमल के तहत इंदराजी फॉर्म दाखिल किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर, डिस्ट्रिक्ट इंतखाबी अफसर, इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसर और बूथ सतह के अफसर ने दिल्ली में जारी इंतखाबी फहरिस्त की एसआईआर के हिस्से के तौर पर उपराष्ट्रपति भवन में इंदराजी अमल में मदद की।
3: एसआईआर इज अ बिग एक्सरसाइज undertaken by our election commission to strengthen the democracy. Every real voter should get registered. This is a good reform and it is a must to strengthen the democracy. Every citizen of our country should coordinate and cooperate with the election commission. That is my humble request to all my brothers and sisters of Mother Bharat.
1: सरकार ने नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत ने टेलीग्राम से कहा है कि वो ओटीटी पर कंटेंट और फिल्मों की नकल के खिलाफ फौरी इकदाम करे। जराये के मुताबिक मजीद बताया जराये ने कि टेलीग्राम से 15 दिन के अंदर इकदाम की रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। इस इकदाम का मकसद भारत की क्रिएटर मईशत, फिल्म इंडस्ट्री, ओटीटी प्लेटफॉर्म, नशर करने वालों, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को तहफ़ फराहम करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी कुमार ने एतमाद जाहिर किया है कि अहमदाबाद और मुंबई को मिलाने वाला पूरा हाई स्पीड कॉरिडोर 2019-29 तक मुकम्मल हो जाएगा। वो अहमदाबाद में नामानिगारों से गुफ्तगु कर रहे थे, जहां उन्होंने गुजरात में रेलवे के जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लिया था। जनाब अश्विनी कुमार ने यह भी कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है और गुजरात सेक्शन में 80% काम पहले ही पूरा हो चुका है। रेलवे के वजीर ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क का काम मरहलावार तरीके पर किया जा रहा है। सूरत को बिलमोरा से जोड़ने वाला पहला सेक्शन अगले साल शुरू किए जाने का प्रोग्राम है।
4: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी से मुतालिक समझौता आज से नाफिज हो गया है, जिस पर नई दिल्ली में पिछले साल सितंबर के महीने में दस्तखत किए गए थे। वजारत खजाना ने कहा है कि यह समझौता बाहमी इकतसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की सिमत में नहायत अहम कदम की हैसियत रखता है। वजारत ने यह भी कहा है कि इस बाहमी समझौते से दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी की सरगर्मियां बढ़ने की उम्मीद है। मौसमियात के महकमे ने बताया है कि अगले चार दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के गुजरात के कुछ और हिस्सों, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बाकी हिस्सों में मजीद आगे बढ़ने के लिए साजगार हालात पाए जाते हैं। इसी दौरान आज कौमी राजधानी में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को हबस और गर्मी से कुछ राहत मिली। मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे T20 बैन अलाक्वामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था, बारिश के सबब इसे तर्क करना पड़ा था। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है, उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने को भी कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है। आईएमडी ने कहा है कि अगले चार रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे टी20 बैन अलावामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम

0: कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांड में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
5: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाए। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
7: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
8: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गजे आकाशवाणी लेने शुंजिकताइन निमेचुचोत निस्तांग पेचादु कसता निस्तांग स्कारमंग अपचुंगा चुकपा लदख सेलोरिक संचस लापुलेन इनाचांग मेसांग स्कुला छेवांग डोलमा सलकाने इशुंगलो सनाचात।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: कसिता चांगचुप सोमोतांग ठपाने सलकने जुंगलोरिक सनाचा

लीजिए अब कार्यक्रम के आखिर का 17 डिग्री में स्थिंगजुक पे का हिम्मत वाला फिल्म लू एसपी बालासुब्रमण्यम ने सनसत लुर सोमकन इंदिवीर तंग लुआंस टेक्कन बप्पी लेरी।

0: स्थानीय समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांगद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 284.9 मीटर यानी 1053 किलोहर्ट्स, FM 101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं। शाम के 6:40 हो रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम।

जय हिंद फौजी भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मन पसंदीदा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में। फौजी भाई इस वक्त के कार्यक्रम में सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं सनम रे फिल्म से गीत, मिथुन और अरिजीत सिंह और अनिरुद्ध बोला की आवाज़ों में। गीत का मिथुन और संगीत का मिथुन।

लीजिए अब सुनिए मद्रास कैफे फिल्म से गीत पेपॉन की आवाज़ में, गीतकार अली हायत और संगीतकार शांतनु मोइत्रा।

अब सुनते हैं हार्टलेस फिल्म से गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीतकार अराफत महमूद और संगीतकार गौरव दगोनकर।

ले जब सुनिए प्रेम रतन धन पायो फिल्म से गीत, अन्वेषा, विनीत सिंह और हरदीप कौर की आवाज़ों में, गीत का इरशाद कामिल और संगीत का हिमेश रेशमिया।

अभी आप हीरोपंती फिल्म से गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में सुन रहे थे। लीजिए अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से गीत विशाल दत्तलानी और की आवाज़ में। गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: सैफुद्दीन सलकनी इलुबों सनसद।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 1,06,000 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्फ। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी। 18,000 से जायद यात्रियों ने किए आज पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की निजामत से जुड़े मुख्तलिफ उमूर का लिया जायजा। मुख्तलिफ महकमों और एजेंसियों के माबेन बेहतर तालमेल पर दिया जोर। और मरकजी सरकार ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर रनवे को बंद करने से मुतालिक मुजवजा मनसूबे को मनसूख करने का किया फैसला। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजीर दिफा और शहरी हवाबाजी का किया शुक्रिया अदा। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बलोतरा राजस्थान में 1,06,000 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और कई एक का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक पेट्रोकेमिकल्स, शहरी ट्रांसपोर्ट, रेलवे, शाहराहों, काबिले तजदीद तवानाई और बिजली की तरसील से है। वज़ीर-ए-आज़म ने पचपदरा में भारत की पहली इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को भी कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों में तैनात किए गए 54,000 नौजवानों में तकरीरनामे भी तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत मुख्तलिफ चैलेंजों के बावजूद भी अपनी तरक्की की रफ्तार को जारी रखेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है।
0: दरियासना वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ने सानंद गुजरात में सीजी सेमी आउटसोर्सड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सहूलत का इफ्तिताह किया। इसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 7,500 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है और इसमें सालाना 5 बिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स तैयार करने की सलाहियत मौजूद है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों पहलगाम और बालतल से खुश असलूबी से जारी है और आज भी हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। तफसीलात के मुताबिक आज कुल 18,000 से जायद यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं और इस तरह दर्शन करने वाले यात्रियों की मजमूई तादाद 31,000 से तजावज कर गई है। इंतजामिया ने यात्रियों की सलामती और यात्रा के ऐसे इनका के लिए तमाम इंतजाम किए हैं और यात्रा पर आने वाले यात्री न सिर्फ यहां की खूबसूरती बल्कि मकामी लोगों की मेहमान नवाजी से जबरदस्त मुतासिर नजर आ रहे हैं।
2: शंकर भगवान की जय। मैं विश्वनाथ यमुनानगर निवासी, मेरी 17वीं यात्रा है। जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा। सरकार से ये आशा करता हूँ कि अगले साल इससे भी कुछ बेहतर करे।
3: मेरा नाम सुनीता रानी है, मैं पंजाब से सरहंद से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, भोले बाबा ने हमें बुलाया दूसरी बार भी, ऐसे ही हर साल बुलाए। प्रशासन बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी व्यवस्था है।
4: मेरे टीना गाबा फ्रॉम सरहंद पंजाब, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहती हूँ भोले बाबा सबको ही बुलाए,
3: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल यात्रियों को मुबारकबाद देते हुए उन पर जोर दिया था कि वो वोकल फॉर लोकल जज्बे को तकवियत बख्शते हुए अपने अखराजात का 10% हिस्सा मकामी एशिया खरीदने पर सर्व करें ताकि यहां के लोगों बिलखसूस नौजवानों के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा हों और जम्मू कश्मीर की मईशत मजीद मजबूत हो जाए। दरियासना जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज मजीद 4,812 यात्री वादी पहुंचे जिनमें 2,041 मर्द और 2,771 खवातीन श्रद्धालु शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जारी सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की कुल निजामत और जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। LG ने श्रद्धालुओं की नकल हमल, ट्रैफिक निजामत, सलामती इंजाम, अकामती सहूलियात, रजिस्ट्रेशन अमल, नीज यात्रा के ऐसे इनका के लिए लाजमी दीगर पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर बताया गया कि काफी तादाद में यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के वादी पहुंच रहे हैं जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को यात्रा करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। LG ने कहा कि यात्रा ट्रैक्स पर यात्रियों की तादाद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के ऐन मुताबिक मुनक्कद की जा रही है, लिहाजा यात्रियों की सलामती और सहूलत के लिए रजिस्ट्रेशन शेड्यूल पर अमल करना लाजमी है। मीटिंग में बताया गया कि

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: ताशिरिंग चंदन ठोपा नजल कनी इजिंग लोगों ना सनाजात।

दोस्तों की जरा टाशीरिंग चिंदा तो पाने साल का ने जिंग लुरिक से नजर ना आकाशवाणी लेने जुन जगतान थाने चुतो गया तो फिर चादो का जता तेन जिंदगी साल का ने बहुत पे लुरिक से नजर

0: Dans un gel à tendin, Kunsale Salkane, pot pelugic sanazats, Naji Akashwani leni, jenjectan. Sanichitot gatans karma jipchijan achadu, kasata Akashwani delinis kon la samacha, sandia, news at 9, yasting ne urdina nasul sanazat.
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।

0: हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra. Several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
0: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। पांच साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
3: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini India, where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
0: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे
3: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets, including the United States, Japan and Europe.
4: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है
5: टुडे इंडियाज थर्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इज बीइंग लॉन्च्ड द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द फर्स्ट प्लांट ऑन 28 फरवरी द सेकंड प्लांट ऑन 31 मार्च एंड टुडे ऑन 4th जुलाई द थर्ड प्लांट गिवन द स्पीड विद व्हिच द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड 12 प्लांट्स इन द कैबिनेट एंड विद कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्टिंग इन 3 आउट ऑफ दोस 12 प्लांट्स अ न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंडियाज सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज हैज इमर्ज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे
4: आज दुनिया भर में भारत की सेमी कंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है
3: Earlier, upon reaching Sanand, the Prime Minister toured the high-tech plant and inspected the production process. He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachupadra in Balotra district, which is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है.
3: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youths recruited across various departments of the government of Rajasthan. Prime Minister Modi will be on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to the 8th of this month. This will be Mr. Modi's fourth visit to Indonesia and his first bilateral visit since India-Indonesia relations were elevated to a comprehensive strategic partnership in May 2018. Here is a report from our correspondent in Jakarta.
6: During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral discussions with President of Prabowo Subianto, reviewing progress across key areas of cooperation under the strategic partnership. In Jakarta, the Prime Minister is also scheduled to address a large gathering of the Indian diaspora, underscoring the deep cultural and historical ties between the two nations. The Indian community in Indonesia is eagerly waiting for the visit. Speaking to Akashvani, Siddharth Taparia, President of the India Club of Jakarta, highlighted the strong friendship between India and Indonesia. He noted that this high-level engagement reflects the importance both countries place on each other. Mr. Taparia emphasized that India and Indonesia, as two of the fastest growing economies with large populations, together create a vibrant marketplace. He expressed optimism that two nations will deepen collaboration in infrastructure, trade, defense, agriculture, natural resources, and other sectors. Shondi Bandashgupta, Jakarta, Indonesia.
3: Following his visit to Indonesia, Mr. Modi will embark on the second leg of his visit to Australia from the 8th to the 10th of this month. On the third and last leg of his three-nation visit, Mr. Modi will be in New Zealand on the 10th and 11th of July. The monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Defence Minister Rajnath Singh today highlighted India's significant progress in manufacturing and technology, saying that the country's defence exports have reached a record of over 38,000 crore rupees. Addressing an event organised by a private media organisation in New Delhi, Mr. Singh said the sharp rise from 686 crore rupees in the financial year 2013-14 reflects an almost 57-fold increase and underlines growing global confidence in Make in India defense platforms.
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है.
7: टुडे आवर डिफेंस प्रोडक्शन हैज रीच्ड मोर देन 1,78,000 करोड़ रुपीस. अंटिल 7 8 और 9 इयर्स अगो द डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ आवर्स वाज एप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ रुपीस. डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव आल्सो रीच्ड ए रिकॉर्ड हाई ऑफ ओवर 38,000 करोड़ रुपीस एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इन 2013 एंड 14 इट वाज ओनली 686 करोड़ व्हिच इज नाउ इन increased by 57 times today.
2: जो आज यह बढ़कर 57 times बढ़ चुका है.
3: Industry experts have said that ethanol blending program has not been introduced overnight but has been implemented through a measured step-by-step and scientifically driven process. Addressing a press conference in New Delhi, former chairman and managing director of Engineers India Limited, Vartika Shukla said the ethanol blending program was placed in the public domain for structured discussions and stakeholder consultations in 2018.
8: The ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence, extensive testing by the automotive manufacturers and the agencies who support them, namely the Automotive Research Association of India. And also it is in line with the global best practices, which is followed to green the fossil fuels to lower the carbon emissions.
3: A Delhi court today rejected the bail pleas filed by Omar Khalid and Sharjeel Imam in Delhi riots conspiracy case. Additional Sessions Judge Sameer Bajpai of Karkarduma Court dismissed the bail pleas filed by both the accused persons. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha today chaired a high-level review meeting to assess the overall management and ground situation of the ongoing Sri Amarnath Ji Yatra. The Lieutenant Governor said, "The Yatra is being conducted as per the Supreme Court mandated sealing of pilgrim movement on the tracks, and it is imperative to adhere to the registration schedule for safety and convenience of the pilgrims." The LG said this after it was revealed in the meeting that an unusually large number of pilgrims have been arriving without valid registration, causing long waiting times for pilgrims to undertake the Yatra. During the meeting, it was stated that only pilgrims possessing valid registration for the designated date shall be permitted to proceed on the tracks leading to the holy cave shrine. Heavy rainfall continued to batter several parts of Maharashtra, disrupting normal life across the state. Mumbai and its suburbs received intense showers, prompting the closure of schools in Mumbai, Thane and Palghar. Flood-like conditions were reported from parts of Palghar district, affecting road and rail traffic. In Raigarh, major rivers including the Savitri, Kundalika and Ulhas are flowing at full capacity, while waterlogging was reported in Mahad. Continuous rain has also raised water levels in Panchaganga and other rivers in Kolhapur. Meanwhile, the India Meteorological Department has issued a red alert for Mumbai, Thane, Palghar and the Ghat areas of Pune and Satara for the next 2 days, while an orange alert remains in force for the Ghat areas of Raigarh, Ratnagiri and Nashik. The India Meteorological Department has also issued a yellow alert in all the 14 districts of Kerala for today. The yellow alert will continue in 3 districts tomorrow. An orange alert has been issued for Kannur and Kasaragod districts for Monday and for Kannur, Kasaragod and Kozhikode on the 7th of this month. Heavy rainfall is expected to continue until the 8th of this month. Due to adverse weather conditions and rough seas, fishermen have been advised not to venture into the sea along the Kerala, Lakshadweep and Karnataka coast. In sports, in men's cricket, India have set a target of 191 for England in the second T20 international of the 5-match series at Old Trafford in Manchester. In reply, England was 16 for 2 in 2.2 overs when reports last came in. Opting to bat first, India posted 190 runs for the loss of 7 wickets in their allotted 20 overs. Ishan Kishan scored 49 off 40 balls, while Abhishek Sharma contributed 43 runs off 24 balls. Earlier, Vaibhav Suryavanshi created history by becoming the youngest player to make his international debut for India. Vaibhav made his debut at the age of 15 years and 99 days, surpassing the long-standing record held by Sachin Tendulkar, who made his India debut at the age of 16 years and 205 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG Semi Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility in Sanand, Gujarat, to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 for host England in second T20 in Manchester, where Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. That is all in the news at 9. Good night.
9: Adab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmin. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत ने بر وقت فیصلوں، مؤثر سفارتکاری اور قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے مغربی ایشیا بحران پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے لے کر 13 اگست تک ہوگا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کے دفاعی سامان کی برآمدات 38,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی سطح پر پہنچ گئی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔

0: कंडक्टर असेंबली और टेस्ट ओसेट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ साथ आलमी टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इनकलाब में अगला मरहला है, जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसेट मरकज से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन निज़ाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा और तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वजीर आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शां आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनाब मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शराह और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मजकूरा प्लांट में मुतनव्व अफरादी कुव्वत की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी इंडिया से ताबीर किया, जहां मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और पेशावर अफराद आलमी डिजिटल मईशत को तकवीत पहुंचाने की खातिर एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस उभरते हुए इको निज़ाम से मस्नूई जहानत और नए सिलसिले की टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत के नौजवानों को मजीद आगे बढ़ने के वसी मौके हासिल होंगे। वजीर आजम ने कहा कि सानंद का प्लांट सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार कर सकेगा। जनाब मोदी ने पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तैयार करने का मुस्तकबिल का बड़ा निशाना तय करने पर सीजी सेमी को मुबारकबाद दी।
1: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते 2.25 सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी।
0: इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि मुल्क में इस साल के आखिर तक 5 सेमी कंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। मजकूरा शोबे की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सानंद मरकज में भूमि पूजन की तकरीब से लेकर कमर्शियल पैदावार का सिलसिला शुरू होने तक सिर्फ 27 महीने लगे।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: जनाब अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि सानंद प्लांट में तैयार होने वाले चिप्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ सनती शोबों में किया जाएगा और उन्हें अमेरिका, जापान और यूरोप समेत आलमी मार्केट्स में भी बरामद किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिससे रियासत में बुनियादी ढांचे, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और रोजगार के मौके पैदा करने को बड़ी तकवीत मिलेगी। दिन भर के अपने दौरे में वजीर आजम ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। इसके बाद जनाब मोदी ने बालोतरा जिले में पचपदरा के मकाम पर मुल्क का सबसे जदीद तर्ज का ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मुल्क के नाम वक्फ किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या मादनियात के लिए एक ऐसा सनती प्रोसेसिंग प्लांट है जिसे साफ सुथरी कच्ची जमीन पर नए सिरे से बनाया जाता है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मगरबी एशिया की महाजराई से 21वीं सदी का तवानाई का सबसे बड़ा बहरान पैदा हो गया था, लेकिन भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए इस चैलेंज पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभाव

0: प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: जनाब मोदी ने कहा कि बहरान के दौरान दुनिया के मुल्कों के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात का अहम रोल रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार ने आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद खाना पकाने की गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होने दिया।
0: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया, औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: जनाब मोदी ने इस मौके पर तकरीबन 54,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे भी सौंपे, जिन्हें राजस्थान सरकार के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख को शुरू होगा और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की सरकार की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल मामलात पर बामकसद बहस मुबासे और फैसलों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत की नुमाया तरक्की को ये कहते हुए उजागर किया कि मुल्क के दिफाई बरामदात रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई हैं। नई दिल्ली में मीडिया के एक निजी इदारे की जानिब से मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि माली बरस 2013-14 में 686 करोड़ रुपये से जबरदस्त इजाफा तकरीबन 57 गुना है और इससे मेक इन इंडिया दिफाई प्लेटफॉर्म में बढ़ते आलमी एतमाद की अक्कासी होती है।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: वजीर दिफा ने कहा कि माली बरस 2025-26 में सालाना दिफाई पैदावार भी अब तक की सबसे ज्यादा बुलंदी 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई, जो 2014-15 की सतह से तकरीबन 3 गुना है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग की वसीतर हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए जनाब सिंह ने मेक इन इंडिया पहल के तहत मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग की तौसी, मोटर गाड़ियों के बरामदात में इजाफे, अंदरून मुल्क तैयार करदा रेल इंजन और डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती को उजागर किया। गुज़श्ता दहाई में मुल्क की तरक्की के बारे में बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने किल्लत का इजाला किया, मौके बढ़ाए और वर्क कल्चर में यकसर तब्दीली पैदा की। उन्होंने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की पॉलिसी के जरिए विकसित भारत की मजबूत बुनियाद कायम कर रही है। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की इत्तलात सामने आने पर टेलीग्राम ऐप को नोटिस जारी किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सरकार ने टेलीग्राम को हिदायत दी है कि चोरी छुपे हासिल की गई फिल्मों और ओवर द टॉप ओटीटी प्रोग्रामों के खिलाफ बिला ताखीर इकदामात किए जाएं। ज़राए ने मजीद बताया कि मस्कूरा प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे। इंडोनेशिया के सदर की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इंडोनेशिया का ये चौथा और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकतदारी तक वसत दिए जाने के बाद पहला दौरा होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी इंडोनेशिया के सदर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे, जिसमें कलीदी शराकतदारी के तहत अहम शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। जकार्ता में वज़ीर आज़म का वहाँ आबाद भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तिमे से खिताब का भी प्रोग्राम है। इंडोनेशिया में भारतीय बिरादरी वज़ीर आज़म के दौरे की मुंतजर है। जकार्ता में इंडिया क्लब के सदर सिद्धार्थ तपाड़िया ने आकाशवाणी से बात करते हुए भारत और इंडोनेशिया के दरमियान मजबूत दोस्ती को उजागर किया उन्होंने कहा कि इस आला सतही राबते से ये बात नुमाया होती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को खास अहमियत देते हैं। उन्होंने इस बात पर पुरउम्मीदी का इजहार किया कि दोनों ममालिक बुनियादी ढांचे, तिजारत, दिफा, ज़राअत, कुदरती वसाइल और दीगर शोबों में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करेंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीका के 250वीं यौमे आज़ादी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वहां के अवाम को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात कलीदी साझेदारी से आगे बढ़कर हैं, जो जमहूरियत, कानून की अमलदारी और अपने अवाम की लामहदूद सलाहियत के मुश्तरका एतमाद पर मबनी है। सनअती माहरीन ने कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम रातों रात मुतारिफ नहीं किया गया, बल्कि ये एक सोचा समझा, मरहलेवार और साइंस पर मबनी अमल है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की साबिक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम 2018 में सिलसिलेवार तबादला ख्याल और मुतालिका फरीकों के सलाह मशवरे के लिए लोगों के सामने रखा गया। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे रियासत भर में मामूलात जिंदगी मुतासर हैं। मुंबई और उसके मजाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मुंबई, थाने और पालघर में स्कूलों को बंद करना पड़ा। पालघर जिले के हिस्सों से सैलाब किसी सूरत हाल की खबर है, जिससे सड़क और रेल ट्रैफिक मुतासर हुआ है। रायगढ़ में अहम दरियाओं में पानी की सतह बढ़ गई है। मुसलसल बारिश से कोल्हापुर में पंचगंगा और दीगर दरियाओं में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। ईरान के साबिक रहबरे आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की 6 रोजा सरकारी आखिरी रसूमात का सिलसिला आज से तेहरान में शुरू हो गया। इसमें हजारों सोगवार शिरकत कर रहे हैं और ईरान के मरहूम रहनुमा को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में दूसरे T20 बैन अलावामी क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड की जीत के लिए 191 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने 5 ओवर्स में 3 विकेट पर 52 रन बना लिए थे। इससे कबल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए भारत ने मुकर्र 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए अपना पहला बैन अलावामी मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए। वैभव ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना पहला मैच खेला। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में CGSEMI के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया, ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वजीर आजम ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा। वैभव सूर्यवंशी बैन अलावामी क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
4: Gunam Pechadu Kasata, Nupchos Luans degrim Sanazat, degrim Pulkan, Padma Yanchen.